0: रंग बरंग निकुन जपन करत बा जी अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर भला
1: तेरे घर आनंद बधाई
2: तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जग का आनंद संसार
0: तुद अग्गे बिन बता।

दिल्ली में शीशगंज रकाब गंड वाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बुला रे।

निर्भउ नाम जपहु हर रंगी, पर तन दुख किस पाप ना फिड़ी। जम जंदार न आवै नेड़ी,

पंचम हरख दि साख सुनावहे बंगा लम्बत माधव गावहे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पहांत अष्ट पोत्र पह

जी गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी हाजरी भरदे होए कीर्तन दे सतकाव जो संगता लो बिनत माया हाजर होए जिस खजाने च माया हाजर कीते सो सुख जाने गुरु प्रकरणा नाम दान गुरु सिखी वाला जन वसना दे अरक्ता बख्शनिया समन सत्संग करनी यात्रा सफली करनी सिखो शब्द

ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनुका फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग को डूबजत है पान के तरंग सब पान ही कहाँगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। केते गच मच केते उनको करत पच केते अच वच हो इस पच उठ जाहेंगे। केते नव बीज अज पच को करेंगे पच कीतक प्रताच होए इस पच उठ जाहेंगे। केते नव बीज अज पच को करेंगे पच कीतक प्रताच होए पचाए खाए जा।

तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत के ते रोबत मरत के ते जल मैं डुबत के ते आग मैं जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मक्का निवासी केत के उदासी के परमाए ई फिरत है। करवत सात केते भूम मैं गडत केते सुआ पे चढ़त केते दुख भरत है। गैन मैं उड़त केते जल मैं रहत केते।

घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे पीतन लगाए हारे शापसी।

प्रयाद भुजंग प्रयाद छंद न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पुत्रंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न तामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न पामंग अलेखंग अभेखंग अयोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं

सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अपेखं अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं अक्षय आद

के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेस के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अचर के पचर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हर्म जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औखधि रोग के सुख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या तरे तापसी हो कहूं रोग हरहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भ्रम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या तरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक काव की कथा कहानी कहूं गोग की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावा कहूं बैठ कुरान के गीत गावा कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं पाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं कहूं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरपी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पष्टवी संस्कृति हो कहूं देश पाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजतानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र तारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागपानी कहूं गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूं अछरा पछरा मछरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं शैल शाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं तिराजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछयाद अद्वै विधाता ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग।

अनछिज गाद करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनपूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय

जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुन जन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत काम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत ना पार कई उर्द पाह देशन प्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरत शास्त्र उचरंत वेद कई को काव कथत कतीब कई अग्निहोत्र कई पवन आहार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र पच नहीं तदप देव होवत प्रतछ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद करम कहूं अग्नि

करत शास्त्र सिमरत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्म देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नताप कई जपत उर्द

गण जूह जुवंग भय कंप मेर पयाल पुअंग तप तापस जल सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर पलंग अनखेद स्वरूप अभेद अप्यंग अनुखंड अभूत अछेद अछयंग अनकाल अपाल दयाल स्वंग जठटियंग मेर आकाश पुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चियंग देव अदेव परंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुखंग जय ताप ना साप ना शोक सुखंग जय रोग ना शोक ना भोग पोयंग जय खेद ना भेद ना छेद छयंग जय जात ना पात ना मात पतंग जय रचियंग छत्री छत्र छतंग जय राग ना रेख ना रोग भणंग जय द्वैख ना दाग ना दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्री जच कंदर फणंत भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत उत भुजंग कई देव देव सराध पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जाच जुवंग नर नारन पुंसक जाय किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज पाज रतादिक पाद गणंग पूत पविक भवान तुवंग जय अंडज जेर सेतज जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग।

रूप है, न रूप रेख रार है, न हाउ है, न पाउ है, न ताउ को प्रकार है। गजादपि नरादपि करंत सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त याद जे बटे समस्त पस्पति।

अजीत, सर्व गंजन सर्व पंजन सर्व तेयन भीत, सर्व करता सर्व हरता सर्व दयाल अद्वेख, चक्र चहन न बरन जाको जात पात न पेख, रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व कायक सर्व तेयन भंग, सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंद दयाल स्वामी आदि देव अपाल, दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, परन चहन न चक्र जाको चक्र चहन आकार, जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न वर्ण, सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को भरन, दुष्ट गंजन सत्रभंजन परम पुरख परमाथ, दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जगाथ, भूत पब भवे भवान प्रमान देव गंज, आदि अंत नाथ श्रीपद परम पुरख अपंज, धर्म के अन कर्म जेतक कीन तौन पसार, सर्व देव देव अदेव गंधर्व किन्नर मच कछ अपार, भूमि आकाश जले तले मेहमानिया जह नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट।

संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर खण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रताप।

कहत नेद नेद नेद जब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाव संवार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानत जाय मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज से जा कराए प्रभ एक रूप द्वैका लखाए अनछिज तेजन पै

करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करतपाल और धंग बृहत सुधंग स्वरूप बुद्धंग अपाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग जन छिज तेजन भिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत जय पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पानहार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद प्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करह नित संत उबार गनी मन गार पच पशु नग नाग नरा

खंड खंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारा पार न पाए सके पद्मापद वेद क देव भेद उचार रोजी ही राज बिलोकत राज गुरु गुरुहान की रोजी न टार कीट पतंग को रंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंग मेव न पेव लखे भ्रम सियो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान।

काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह विहीन स्नेह सबूतन नेह प्रकृत गेह अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दाह काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मा बतला है रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते भात बचावा शत्रु अनेक चलावत कहाव तौ तन एक ना लागन पावा रागत है अपनो करदा कर पाप संभू न पेटन पावा और की बात कहां कह तो साओ सो पेट ही के पट बीच बचावा जच भुजंग सुदानव देव भी तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम का अस्पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे पायस कह नहीं पार प्रभा हु को नेतह नेतह भेद बतावे कोई ठगे सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ ना आवे नारद से चतुरानन से रुम नानक से सब हूं मिल गायो वेद कते न वेद लगे सब हार परे

वेद पुराण कदेव कुरान अभेद निर्वाण सपै पचहारे भेद न पाए सके अनभेद को खेद तहन छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे आदि नाद अगाद अभेगत वैग जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुतान महाव्रत धारे देश प्रयोग कर पेश तपोधन केस धरे नमले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे पुण्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित छत्र के तरैया छत्र धारियो के छलैया महा छत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल के युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महा

मान को महेश गंग धान को अभेश कही यत है गंग रंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण यौन काहू पैना दीन साथ अधीन कही यत है पाइया न पार तेज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाच पहुंचत ताहि चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते ब्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते

अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप होके राशि है अनासी कह कह मानी है जंत्र हूं न जात जाकी पाप हूं न माए ताकी पूर्ण प्रभा की सो छटा कह अनुमानी तेज हूं को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानी है तेज हूं को तर है के राशि को सर है के शुद्धता को कर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है वृक्तता की पान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय विनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देनता है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के पासी है जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को कर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया दे मान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरन है अवता को हरन है के सुख को करन है के तेज को प्रकाश है पाइय न पार पार अवार हूं को पार जा को कीजे तो विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमा लगावे हबसी हलपी दावे पूर्वी न पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अवेवना दत्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के पुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है तरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपागर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंसनी सी सिहारों हीरा सी हुसैना बाद गंगा कैसी धार जली साधु सिंधर उल के पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सुसा सीरा सोरा सी सुरंगाबाद निके रही चूल के चंपा सी चंदेनी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी अलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगदार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंग तेरे गीत गाइयत है वकरी कंधारी गोर गखरी कर दे जाचारी पौन के आहरी तेरु नाम ध्यात है पूर्व पलाऊ काम रूप यो कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजा जहां जहां जाई अत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंदिर के अतापी नाथ कीरत तिहारी को ना पार पाई अत है तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वैन आसासन अडोल अद्वैन तुपमा तो

जगमग तेज पूरन प्रताप, अंबर जमीन जह जपत जा, सातो आकाश सातो पतार, बितरियो अदृष्ट जह कर्म जार, सातो आकाश सातो पतार, बितरियो अदृष्ट।

0: उस वेले सारे खालसे दे नाल इस तरह मुख तो बाणी प्रकाश कीती बचन कीते
1: खालसा सुमन वाणी।
0: सतगुरु ने आख्या इत्थे खालसा सुमन वाणी होएगा। सुमन वाणी अर्थ इथो खालसा फुटेगा, इथों एक लहर चलेगी जिद तो सब खालसे हो जाएंगे। सतगुरु का यह बचन साध संग जी पूर्ण होया बहुत घट समय के अंदर। पूरे का पूरा मालवा पूरी की पूरी बराड़वंश अमृतधारी होके कलगीधर जी की फौज च शामिल होए। गरीब नवाज सतगुरु जी ने ऐसिया बख्शिशा दमदमा साहब जी की पावन धरती से वरताइया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन गुर इतिहास की कथा विचार करदे हां, बेअंत प्रकार दियां भुलां होईयां हन। हमरो सहाओ सदा सद भूलण, तुमरो बिरद पतत उधरण। होई भुल चुक दी आप गुरु की गरीब नवाज संगत ने खिमा बख्शिश कर देनी। सतगुरु सच्चे पातशाह सदा सदा बख्शिंद हन। गरीब नवाज सतगुरु कलगीधर गरीब नवाज जी होई भुल चुक दी खिमा बख्शिश करन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू अपने चरणा की सेवा दे योग बना के रखन ये आसीस बख्शनी जी। दो पंक्तियां पढ़ के फतेह दी साज पाईए, लिख है कत है ना छुट्टी है खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै।

इच्छित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभय कर तारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब रन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो भर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नवरिए। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असदुज जूं करी और अच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा पपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु।

है तहे हमारा जन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेव कण को सेव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पड़ पड़ की जाने जा बुद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ

चौपई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र सम

चित तामे धरो अब रीर के देहो वह हमको जहां बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद बेचारे देह

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत स्वर्ग बास रग बर कर सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परे लौ लहु सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा पर साध सवैया आए गए जब ते तुम रे तब ते कू आख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम रि कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो।

गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो। जे को खावै जे को भुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।